0: Night Shift. All your favorite music. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया तेरे

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दिया।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: फरिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक गुड मॉर्निंग 7:07।
2: Bollywood.

0: आज बिजली चमकी भी तो हो सकता है कि बादलों के पीछे दिखे ही ना।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: You wake up at 5:30 and it is dark out there. It's that kind of a cusp season right now. Kabhi bright roshni, kabhi matlab gup andhera. Aisa feeling hogi 5:30 AM. I can talk about because that's the time that I wake up now. Ek ghanta later than earlier because 7 to 11 ab show ke times hain. And NCM in fact has issued an early morning fog alert. For this Wednesday, 2nd of September, aaj subah 8:30 tak, you got to be specially till 8:30 AM. Visibility might drop in some coastal inland areas. And you know, September ke time pe, you know, the mausam typically starts moving back into the foggy morning wala jo cycle hai. Although daytime temperatures around 11-12 baje tak to early 40s, you can expect the temperature to rise. So, but be careful till 8:30 AM, yani ki aap aur hum, जब साथ में होंगे अगले डेढ़ घंटे तक, देर इज अ फॉग अलर्ट, सो ड्राइव सेफली। तेरा मेरा रिश्ता इज कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड रेडी ऑन बिग 106.2। एंड किसी भी रिश्ते को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई गाना, इन केस यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग, फॉग और नो फॉग, व्हाट्सएप इट टू मी 0543091062। दैट्स द व्हाट्सएप नंबर 0543091062। दिस इज वन फुल फर्स्ट आवर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आवर।

0: दिल की दरी ट्रैफिक की बात करते हैं। सुबह सवेरे सम ट्रैफिक के चोर इकट्ठा हो गए हैं ऑन द रोड्स इन द यूएई दिस मॉर्निंग।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: So an accident this morning, Alkhel Road heading south, Om Sikkim Street ke aas paas junction hai, wahan par there was an accident, in fact about half an hour ago, ab tak to clear ho gaya hoga, lekin kaafi slow moving traffic southbound at E44, in case you spot something, you know what to do, give me a call 800-1062, first 2 days were quite eventless, huh? Very nice, smooth, flowing, lekin aaj for a change I found traffic and the reason that newspapers are reporting is ke log kafi sare ab rules tod rahe hain. It's not just 31st of August bhai log, that has to be accident free day. Ye sare days should be ideally accident free days only, lekin stopping in live lanes, double parking schools ke aaspaas, jumping queues, illegal U-turns, ye sab kuch is adding to the already heavy traffic out there. So please behave yourselves on the roads. कुड़ी नू नचने दे और हमें स्कूल जाने दे भाई, काम पे जाने दे। लाइक आई सेड, इफ यू स्पॉट समथिंग ट्रैफिक वाइज द नंबर इज 800-1062। लॉट्स कमिंग अप ऑन द शो इंक्लूडिंग अ चांस फॉर यू टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी। कीप इट लॉक्ड।
2: तुम बीमार हो?
3: नो।
2: तो लेती क्यों?
3: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Good morning, it's 7:25 on the clock. Already told you about the fog alert, early morning fog alert by the NCM till 8:30 a.m. today. Horizontal visibility might get affected, so be careful out there. Humidity very high. As a result, 71%, winds blowing at 10 kilometers per hour. It's 34 degrees Celsius, highs of 38, lows of 33.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: दे।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
2: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 7:54 on the clock, and thank you so much for all those people who messaged the correct answer to me.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: जब कोई बंदा बाहर से सख्त और अंदर से नरम होता है तो उसको इस चीज के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुनील शेट्टी, हाँ, देन देयर इज अमरीश पुरी, प्राण, विलेन्स ऑफ बॉलीवुड, गुलशन ग्रोवर के बाहर से बहुत ही सख्त, अंदर से नरम. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज कोकोनट. टुडे इज द वर्ल्ड कोकोनट डे, एंड थैंक यू वेरी मच टू विनायक. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम मनोज बचानी, एंड देन देयर इज अरसलान एंड सुमन गिरी फ्रॉम शारजा. थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग. आज वर्ल्ड कोकोनट डे. हाँ, है तो बड़ी काम की चीज. एंटायर एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज एक्चुअली यूजफुल, फ्रॉम द हस्क टू द फ्रूट टू द लीव्स टू एवरीथिंग. किसी ना किसी काम ये पेड़, ये झाड़ जरूर आता है कोकोनट के. एंड इट इज अ नेचुरल आईवी फ्लूइड इसका पानी. एंड या जब गर्मी होती है तो हमारा एक खास ध्यान रखता है. बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एंड दैट इज वाई आज ये वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है. कि ऐसा वैसा नहीं कि भाई नारियल पानी पिया, एक्स्ट्रा मलाई मांगी, बस ये उसके काम ही नहीं है. इट इज एक्चुअली दैट वन नट विच इज नॉट अ नट विच इज एक्चुअली वेरी यूजफुल इन एलिविएटिंग पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो हैप्पी वर्ल्ड कोकोनट डे. बट चलो अब कोकोनट हमारे कोस्टल एरिया से चलते हैं थोड़ा यूरोप की ओर.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: Listen, one thing that you have to do every day on your way to work, एक WhatsApp जरूर आपको भेजना है, big check-in space देकर अपना नाम. That's what you got to do for the entire duration of this campaign. Big check-in space your name, WhatsApp it to 054-309-1062, 054-309-1062, and who knows, you could win a trip to Germany with Team Big in the latest season of Big Check-in. हम जा रहे हैं Germany, so big check-in space अपना नाम, उसे भेजो 054-309-1062 पर.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: वो आ गया. देखो वो आ गया.
1: Naam hai Sid on the Big Breakfast. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms, everything.
4: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
7: Two splendid years of insurance market metro station. 2 years of helping the UAE move, choose and stay protected. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 8:09।
1: Bollywood.

0: Everybody's waiting for Nitesh Tiwari's Ramayan, lekin isme no Sunny Deol.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Nahi, matlab film ke andar to hai, lekin jitne promotional material hua, trailer wagera, usme no Sunny Deol. That is the big talking point. And ab sunte hain ki wo jo afwah thi, and people had kind of come to that conclusion themselves. That is almost कन्फर्म्ड कि हाँ, जब हमने ट्रेलर देखा तो उसमें रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण, साई पल्लवी एज सीता माता, बट देयर वाज नो सनी देओल एंड लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इवन अमंग पीपल हु आर नॉट बिग सनी देओल फैंस एज वेल कि यार वेयर इज सनी देओल, वेयर इज लॉर्ड हनुमान इन द ट्रेलर. सो जो लोग सोच रहे थे वही ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, एंड दैट इज के दे टेकन अ लीफ आउट ऑफ राजामौली एंड इज बाहुबली की बुक, विच इज के राइट टूवर्ड्स द एंड ऑफ पार्ट वन, राइट टूवर्ड्स द एंड, यानी कि क्रेडिट रोल से कुछ पहले या फिर हो सकता है क्रेडिट के बाद भी, देयर इज गोन बी वन पोर्शन ऑफ लॉर्ड हनुमान. इट्स गोन बी अ बिग सनी देओल का लॉर्ड हनुमान रिवील, एंड द मेकर्स आर होपिंग इट माइट लीड टू अ बाहुबली स्टाइल फ्रेंजी. 15 मिनट का फुटेज दिखाया चेन्नई में, एंड एब्सोल्युटली स्टंड द एग्जिबिटर्स ओवर देयर. तो भाई रामायण जब रिलीज होगी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हाउ अबाउट अ ट्रिप टू जर्मनी यार.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज बीन व्हाट्सएपिंग. आप भी व्हाट्सएप करो इफ यू वांट दिस अनमिसेबल अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू जर्मनी विद टीम बिग इन द लेटेस्ट सीजन ऑफ द बिग चेक इन. क्या करना है आपको, बिग चेक इन स्पेस अपना नाम. कुछ लोग बिग लिख रहे हैं, कुछ लोग चेक इन लिख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना नाम भेज रहे हैं, नहीं, तीनों एक साथ आपको भेजने हैं. बिग चेक इन स्पेस अपना नाम टाइप कीजिए, कर लिया, उसके बाद उसे व्हाट्सएप कीजिए 0543091062 पर. इन जस्ट अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स वी गोना प्ले फाइंड द जर्मन डिश. दैट इज द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट दिस एंटायर वीक. सो गेट व्हाट्सएपिंग नाउ.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big.
2: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लगती है, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना.
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
2: अलरास बोले तो?
3: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready. Get driving. The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
6: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 8:29 on the clock. Let's start from the capital, Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic milega at E30 Musafa Industrial par. Also E22 is a bit congested going towards Mount Bin Zayed, the city, and a bit of congestion Rabdan mein, E20 sector 13 Khalifa city, and then E22 as well heading towards Sheikh Zayed Grand Mosque. Chalte hain Dubai Sharjah ki aur. Heading south going towards Dubai from Sharjah at 311 and E11, as expected you'll find 7 to 8 minutes ka delay. Then there's a bit of southbound traffic at E11 Sheikh Zayed Road as you get out of Trade Center roundabout, and 66 aaj both directions mein kafi chock a block traffic aapko milne wala hai Dubai Creek se lekar all the way Al Jadaf going towards E11. Then there's the 44 pe Al Khail Road, Alkus 4th ke taraf jata hua southbound traffic aapko milne wala hai. And then traffic in both directions at the junction of 311 and 44 you'd find around JVC, and 611 ka bhi traffic badhna shuru ho gaya, and this is heading south going towards Al Aviv.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
7: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: It's 8:40 on the clock and wholesale changes in the Pakistan cricket team.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Right, aapne suna hoga that Misbah ul-Haq has given his istifa, he's given his resignation, but five of the players have been dropped after their defeat in the second test match. Mohammad Rizwan, Imam ul-Haq, Salman Ali Aga, Ali Usman, Khurram Shehzad. ये तो उन प्लेयर्स की बात होगी जो फीचर्ड इन द सीरीज सो फार, जबकि आमिर जमाल एंड मोहम्मद अवेस जाफर तो दे हैव बीन सेंट होम विदाउट प्लेइंग ओनली. सो सेवन प्लेयर्स, या नो लेस देन सेवन प्लेयर्स हैव बीन रिप्लेस्ड इन द पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड, एंड हेड कोच सरफराज अहमद एंड उनके असिस्टेंट उमर गुल हैव ऑल्सो बीन रिप्लेस्ड. एंड हुआ द रिप्लेसमेंट्स, पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच माइक हेसन एंड फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया सीमर एशली नॉफके, दीज आर द रिप्लेसमेंट्स that have been kind of called in. So it's not just ikka dukka change, wholesale changes ho rahe hain Pakistan cricket team mein. To dekhte hain ki aage kya hota hai. Bilal from Durandar the Revenge coming up in just a while. If you haven't sent in your WhatsApps, kya kar rahe ho bhai, send in your WhatsApps. Big check-in space dekar apna naam aapko bhejna hai, WhatsApp karna hai 0543091062 pe. In just about half an hour we'll be playing Find the German Dish.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurers Market.
1: चेक करिए ना, अक्षय कुमार ने इतनी सारी अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्में कर ली है. नाउ दैट हिज कॉमिक टाइमिंग इज लाइक नंबर वन इन द इंडस्ट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ टेक हिम सीरियसली इन रियल लाइफ आल्सो.
2: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: ये एक्चुअली मैंने कह रहा हूँ, प्रियदर्शन के साथ ऐसा हुआ दैट ही थॉट इन एन इंटरव्यू, प्रियदर्शन सेड रिसेंटली दैट उनको लगा कि यार ये तो मजाक कर रहे हैं अक्षय कुमार प्रियदर्शन से बात करें. एंड देन ऑफ कोर्स इवन प्रियदर्शन हैज थ्रोबैक्स टू हेरा फेरी, राइट? सो व्हेन अक्षय कुमार said that he's actually interested in playing the villain in Hewan, even Priyadarshan thought that he was joking. Of course, it's a remake of the Malayalam film called Oppam. I hope I got the pronunciation right. I'm pretty sure I got it wrong. But crime thriller Hewan, jo hai, usme Saif Ali Khan versus Akshay Kumar. And yeah, Pritam Chakrabarty ka music hai. Kafi alag hatke music hai. Chalo, saath milkar ek gaana sunte hai, the brand new song from this soundtrack. It's called Rangiyara. And Saif Ali Khan is traveling in a jetty. वो जो ferry होती है ना, ferry jetty, तो उसका वो होता है, port होता है, right? But ferry में travel कर रहे हैं Saif Ali Khan and then Sukhwinder Singh after a very long time. Pritam Chakrabarty की आवाज़ साथ में, शान भी है. This is Rangiyara from the upcoming Hewan, released just a few hours ago.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms, everything.
4: Don't worry. I found the best back to school rent a car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
8: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
9: हाय सागर।
10: हाय अपनी, थैंक्स फॉर कॉलिंग, इट वाज अ प्लेजर रिसीविंग योर कॉल। यस,
9: क्या क्या तैयारी करी है जर्मनी के लिए?
10: पूरा एनसाइक्लोपीडिया मैंने छाप दिया पिछले कुछ दिनों से जर्मनी को लेके। लेट्स ट्राई,
9: लेट्स ट्राई कि इतना एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने के बाद आप ये आंसर कर सकते हो कि नहीं। आई एम गोना गिव यू 3 फूड डिशेस, आपको मुझे बताना है कि कौन सी जर्मनी की है। एप्पल स्ट्रूडल,
10: ओके,
9: वर्सेस चूरोस, वर्सेस डोनट।
10: Okay, I think definitely donuts is not.
9: Okay.
10: And churros should also not be. As for the terminology, I think it should be apple strudels.
9: Confirmed?
10: Yes, yes.
9: Lock kar diya jaye?
10: Yes, please.
9: It is the right answer.
10: Yes.
9: देखो यार, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तुक्का अच्छा मार दिया यार, परफेक्ट। तो ये खाओगे वहाँ जाके, आपको पता है ये क्या होता है, कैसे बनता है?
10: नहीं ये तो नहीं पता, बट बीइंग अ वेजिटेरियन आई थिंक आई वुड बी हैविंग लिमिटेड ऑप्शंस, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू
0: चेयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद अवनि ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: It's 9:32 on the clock and let's start with D88 Talkaram ki taraf zyada wo traffic aapko milne wala hai, also going towards Zabil first E11 pe there's slow moving traffic as soon as you get out of Trade Center roundabout heading south, then there's 66 jisme dono dishaon mein there is traffic going away and towards E11 Sheikh Zayed Road, then there's D71 pe going towards Dubai Mall you'll find congestion, also Maidan Street has been busy since this morning right outside Bowling Center and this is again going towards E11 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Usual traffic aapko milne wala hai about 7 to 8 minutes, and unusual situation heading north after City Center Mirzif you'll find 3-4 minute ki der again on 311. And Ribat Street is quite chock-a-block this morning. D83, and this is going towards Festival City as you take that exit from City Center Mirdif. In case you spot something, give me a call 800-1062.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:14।
1: Bollywood.

0: यार रोज कुछ ना कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग न्यूज आती है जिसके जिसको देख के मुझे लगता है हाफ ऑफ मी इज सेइंग व्हाई एंड द अदर हाफ इज सेइंग व्हाई नॉट.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: All the LinkedIn users, did you come across this very unique, never been done before job posting? So here's what happened. Pakistan Cricket Board PCB ne ek LinkedIn post dala that they are hiring. Actually, Pakistan ke jo fielding coach ki vacancy hai, they found a very unique but a very practical way of looking for filling that position, and that is LinkedIn. Ki bhai dekhe to sahi. लोग लिंक्डइन करते रहते हैं, लिंक्डइन से किसी को नौकरी मिलती भी है कि नहीं मिलती है. दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ. अगर पाकिस्तान के फील्डिंग कोच की पोजीशन लिंक्डइन से फिल हो गई, देयर इज गोना बी अ फर्स्ट. आई मीन लिंक्डइन लाइक प्रोवाइडिंग अ क्रिकेटिंग जॉब इज टोटली अनहर्ड ऑफ, एंड दैट टू फॉर अ नेशनल टीम लाइक पाकिस्तान. सो हाफ ऑफ मी इज लाइक सेइंग कि यार ये नौबत आ गई कि लिंक्डइन, एंड देन द अदर हाफ इज सेइंग कि व्हाई नॉट, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट. यार आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इस बात पर एक पोल क्वेश्चन तो बनता है. और आर इंस्टा, आज मैं एक पोल क्वेश्चन डालने वाला हूं. इफ यू डोंट फॉलो अस, फॉलो अस 106.2 बिग एफएम, दैट इज आर इंस्टा हैंडल. बट आप जानते हैं, इट्स द थर्ड डे ऑफ बैक टू स्कूल, थर्ड डे ऑफ द वीक, एंड फोर्ड बैक टू स्कूल 2026 कैंपेन बाय अल्टायर मोटर्स. कैंपेन रन टिल द 27th ऑफ सितंबर. बाय नाउ पे अगले साल 2027, डाउन पेमेंट ऑन अल्टायर मोटर्स, एक साल की फ्री इंश्योरेंस, 5 साल या फिर 100,000 किलोमीटर्स की सर्विस एंड वारंटी एज वेल. ऑफर्स अवेलेबल ऑन सिलेक्टेड फोर्ड मॉडल्स. ग्रेट opportunity for families to get ready for the new school year with attractive Ford offers. Big.

0: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name to 054-309-102. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: Digestion Cool Tips with Dabur Pudinhara.
2: रूम का एसी कूल करे बाहर, डाबर पुदीन हरा कूल करे अंदर. योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ आफ्टर हेवी मील्स.
1: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
3: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: It is 10:45 on the clock. Let's take a look. सबसे पहले at 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. जितना ट्रैफिक आधे घंटे पहले था अब उससे कहीं कम है. 5 से 6 मिनट की देर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन there's still that northbound उल्टी दिशा का ट्रैफिक एंड दिस इज राइट आउट सिटी सेंटर मिर्दिफ अलवर का. वंस से नॉर्थ जब आप जाएंगे ऑल द वे टू ऑलमोस्ट मोहेसना यूल फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक. देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन नाउ एट D89 एज वेल हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एरिया. गुड न्यूज इज के अब पहले के मुकाबले कम है, लेकिन ट्रैफिक है अभी भी एट D83. आई एम टॉकिंग अबाउट रिबात स्ट्रीट एंड दिस इज अराउंड द फेस्टिवल सिटी एरिया गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे. 66 पर दुबई अलेन रोड यूल फाइंड स्टिल अ बिट ऑफ कंजेशन नॉर्थ बाउंड गोइंग टुवर्ड्स E11. देन देयर इज द यूजुअल D75 शेख राशिद स्ट्रीट गोइंग टुवर्ड्स दुबई frame and a bit of congestion still at Maidan Street as well.
5: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: दिस समर दिस बिग कैश विन्स विद बिग टिकट,
3: अ गारंटीड 15 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज अवे,
2: प्लस विद बिग स्पिन द चांस टू विन अप टू 1 मिलियन दिरहम्स
3: एंड 5 कंसोलेशन प्राइजेस ऑफ 100,000 दिरहम ईच।
2: डोंट फॉरगेट द 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: Big 106.2. That's my song.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटाएगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Tum kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय सागर।
3: हाय अपनी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। इट वाज अ प्लेजर रिसीविंग योर कॉल। यस।
2: क्या क्या तैयारी करी है जर्मनी के लिए?
3: पूरा एनसाइक्लोपीडिया मैंने छाप दिया पिछले कुछ दिनों से जर्मनी को लेकर। लेट्स ट्राई।
2: लेट्स ट्राई कि इतना एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने के बाद आप ये आंसर कर सकते हो कि नहीं। आई एम गोना गिव यू 3 फूड डिशेस। आपको मुझे बताना है कि कौन सी जर्मनी की है। एप्पल स्ट्रूडल
3: ओके
2: वर्सेस चूरोस वर्सेस डोनट।
3: Okay, I think churros should also not be, as per the terminology, I think it should be apple strudel.
2: Confirmed?
3: Yes, yes.
2: Lock kar diya jaye?
3: Yes, please.
2: It is the right answer.
3: Yes.
2: देखो यार, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तुक्का अच्छा मार दिया यार, परफेक्ट। तो ये खाओगे वहाँ जाके? आपको पता है ये क्या होता है, कैसे बनता है?
3: नहीं ये तो नहीं पता, बट बीइंग अ वेजिटेरियन आई थिंक आई वुड बी हैविंग लिमिटेड ऑप्शंस, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो।
0: चेयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद अवनी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. insurancemarket.ae.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: कल से ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन स्टिल एट 61% विद 39 डिग्रीज टेम्परेचर.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2. Big.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जो मैं बात कर रही थी इस कैमरा जेट की. ओके व्हाट इज इट? इट्स एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश, रादर अ फ्यूचरिस्टिक टूथब्रश जिसमें कैमरा है. कैमरा पहले हमारे फोन्स में होता था, फिर ग्लासेस में भी आ गया, वॉच में भी आ गया, भाई पेन में भी आ गया, अब टूथब्रश में आ चुका है. दिस इज टाइनी कैमरा जो स्कैन कर सकता है ऑफकोर्स आपके अंदर के दांत. एंड जस्ट नॉट दैट, 28 इमेजेस क्लिक कर सकता है पर सेकेंड. एंड दिस टूथब्रश ऑफकोर्स कंबाइंस ब्रश का रूल, उसके फंक्शंस, वाटर फ्लॉसर, माउथ वॉश डिस्पेंसर एंड अ डेंटल कैमरा. सो जो हम रील्स देख रहे हैं उसमें हमारे इनसाइड ऑफ माउथ की भी रील्स आने वाली हैं. कैमरा तो है, लग गया है. वेल, कितने का है ये फ्यूचरिस्टिक टूथब्रश? आप लोगे या नहीं लोगे इस पे हम करेंगे और बात. लेकिन भाई इस टूथब्रश के साथ ना जो हमारे दांत है वो तो फुल नाचने वाले मोड पे होने वाले हैं. जस्ट नॉट दैट, अगर आपने ये टूथब्रश यूज किया एंड फिर दर्द होने शुरू हो गई तो फिर क्या करेंगे हम? ब्रांड की ऐप से आप वो कैमरा में क्या कैप्चर हुआ है वो भी देख सकते हो. ओ माय गॉड, दैट इज एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक. बात करेंगे इस पे और टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 mein main hu Avni aapke saath. And would you buy a 2000 dirhams ka toothbrush? Mujhe call karo 800-1062 par batao ki yaar 2000 dirham ka aap toothbrush kharidoge ke nahi kharidoge. Well, main uske aapko functions bata deti hu, advantages bata deti hu ki bhai 28 images per second click kar sakta hai. Of course, जब आप ब्रश करोगे उससे हर जगह जा जाके वो क्लिक करेगा. एंड जस्ट नॉट दैट, सिंस इट्स एन AI टूथब्रश, वो AI इमेजेस भी क्रिएट करेगा. हाँ, आप उसकी रील्स भी बना सकते हो. लेकिन मेरा बस एक सवाल है यार, ये जो मेरे, अगर मैंने कल चिली फ्लेक्स खाए हैं, फंस रखे हैं मेरे दांतों में, है ना, तो क्योंकि मैं AI की बात कर रही हूँ, तो क्या ये इमेजेस को, चिली फ्लेक्स की बात कर रही हूँ, व्हाट्स इट, पीजे था कि नहीं था. वेल, यू कॉल मी 800-1062 पर कि भाई बताओ ये 2000 दिरहम का फ्यूचरिस्टिक टूथब्रश जो है आप लोगे नहीं लोगे, विच हैज अ कैमरा जेट, उसका नाम ही कैमरा जेट है उस टूथब्रश का, ब्रांड लॉन्च कर रहा है इसी महीने, आपको मिल जाएगा ये स्टोर्स पर भी, इसकी ऐप भी है, इमेजेस आप वहां से भी देख सकते हो. बट वुड यू बाय 2000 दिरहम्स टूथब्रश और नॉट? 800-1062 इज अ टोल फ्री नंबर, कॉल करो 800-1062. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood. School's starting soon and we need a car.
1: And books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
2: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
3: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
4: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी. आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी.
3: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, अगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उनका मूड भी ऐसा होता है क्या? अब नहीं होगा यार, बिकॉज नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो बेसिकली सेल्फ ड्राइव के साथ आगे बच्चों का मूड भी ना एकदम फटाक से टॉप नॉच हो जाएगा. बिल्कुल भी सैड माहौल नहीं होगा. Clear, smooth ride. Get ready with me se hatke yaar. Get school ready with self-drive and keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक घड़ी पे बज रहे हैं 2:06, बट फिलहाल टाइम है बिग चेक इन जर्मनी जाने का।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि अगर आप इन हो फॉर बाइंग अ 2000 दिरहम टूथब्रश. हाय डेनियल.
3: हेलो अवनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने आज कितनी बार ब्रश किया है?
3: अभी तक तो एक ही बार किया है.
2: अभी तक एक ही बार किया. रोज दो बार करते हो वैसे कि नहीं करते हो?
3: हाँ जी बिल्कुल.
2: आप ये 2000 दिरहम का ब्रश खरीदोगे?
3: यार मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज लेटली आई वेंट टू अ डेंटल अपॉइंटमेंट और शी टोल्ड मी दैट एटलीस्ट एवरी 3-4 मंथ्स आपको एक बार क्लीनिंग करनी चाहिए, आपको हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी ईट. सो अगर हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं देन व्हाई नॉट दांतों का भी ध्यान रखना चाहिए. एंड इफ दिस हेल्प्स मी देन ऑफ कोर्स आई विल बाय इट.
2: दिस साउंड्स मी लाइक हम अपनी फोटो भी तो क्लिक करते ही हैं. तो ये वाला टूथब्रश जो है 28 इमेजेस पर सेकेंड की पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा है, सो व्हाई नॉट कि हम अपने दांतों की भी पिक्चर्स सेव करके रखें.
3: हां डेफिनेटली, व्हाई नॉट. Something different, something new.
2: Daniel, are you a creator by any chance?
3: Yes.
2: क्योंकि इतना तो भाई फोटोज के बारे में मैं समझती हूँ, क्योंकि I'm also a one. So मुझे लगता है कि हमें बहुत चाहिए होती है फुटेजेस, बहुत चाहिए वीडियो क्लिप्स, इमेजेस, चाहे दांतों की हो मिल जाए बस, है ना?
3: Yes, I've been a content creator for a long time. अभी दुबई में भी content create करता हूँ मैं.
2: So, अगर आप ये टूथब्रश खरीदते हो और जो इसकी इमेजेस जनरेट होंगी आप ऐप से देख सकते हो, तो आप इसका रील बनाओगे?
3: हाँ अगर, हाँ अगर मेरे दांतों की फोटो अच्छी आएगी तभी बनाऊंगा, नहीं तो किसी और को मॉडल देना पड़ेगा.
2: अपने दांतों की फोटो पोस्ट करने की
3: वो तो फोटो खींचने के बाद ही पता चलेगा.
2: मुझे बहुत लोग कह चुके हैं अपनी तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, अब इतनी अच्छी स्माइल, इतने अच्छे दांत लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी फिर डाल ही दूंगी फोटो, क्या कहते हो?
3: ठीक है फिर कोलैब कर लेंगे.
2: ओहो कोलैब हैपनिंग ऑन एयर. ओके थैंक यू सो मच. यू टेल मी कॉल करके 800-1062 पर वुड यू बाय दिस 2000 दिरहम्स फ्यूचरिस्टिक टूथब्रश और नॉट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Provence, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: इट्स नियरली 40 डिग्रीज आउट देयर, 39 टू बी प्रिसाइज, एंड ह्यूमिडिटी जो है 61% पे चल रही है। काफी गर्मी और काफी चिपचिपाहट वाला मौसम है आज।
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
5: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
3: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ लेके चल रहे हैं हम आपको बिग चेक इन जर्मनी में. एंड आज का कॉन्टेस्ट में हम खेलने वाले हैं जर्मन फूड डिशेस. इतना जो आप पढ़ाई कर चुके हो ना जर्मनी के बारे में उसकी रिसर्च पर अब हम क्वेश्चन करेंगे. लेट्स सी आपको ये डिशेस के बारे में पता है कि नहीं पता है. मैं करूँगी आपको कॉल एंड आपको क्या करना है, आपको मुझे मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर. टाइप करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. बिकॉज मैं तो अभी से इमेजिन करूँ यार जर्मनी में. का मैसेज आएगा मुझे आज जो उसको मैं कॉल करूंगी. अच्छा ट्रैवल सॉन्ग है लेकिन जर्मनी में और भी अच्छा लगेगा. नंबर रिपीट कर देती हूँ 0543091062. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
2: The Beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने कॉल किया है आज सारा को. हाय सारा.
4: हाय अवनी, हाउ आर यू?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
4: मैं ठीक हूँ.
3: आर यू एक्साइटेड फॉर बिग चेक इन जर्मनी?
4: ऑफ कोर्स.
3: अपनी रिसर्च कितनी कर चुके हो ना, स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करोगे?
4: अराउंड 6 आई थिंक.
3: ओके, अभी स्टिल टू गो, बट लेट्स सी आप ये जर्मन फूड डिश कॉन्टेस्ट जीतते हो कि नहीं जीतते हो. ओके, आई एम गोना गिव यू 3 डिशेस. आपको बताना है कि जर्मनी की कौन सी डिश है.
4: Okay, let me try.
3: You ready?
4: Yeah. Yes.
3: Okay. So first option is sauerkraut. Second is kimchi. Third is pickles.
4: The first one. Sauerkraut. Sorry.
3: You sure about this one?
4: Yes.
3: Lock kar diya jaye.
4: Yes, lock kar diya jaye.
3: And that's the correct answer. Bhai saab, 1 to 10 ke aapne khud ko 6 number diye, phir bhi aap jeet gaye bhai.
4: Yeah, I was so skeptical. I was like, is it correct or not? But then I was like, okay, kimchi, anyways, I knew it is from Korea.
3: Acha, so, kimchi khaiye?
4: Haan, khaiye.
3: Pickles khaiye?
4: Pickles, of course.
3: और ये sauerkraut खाया है?
4: नहीं, अभी तक तो नहीं.
3: नहीं खाया है, तो ये आपकी चेकलिस्ट में होगा जब आप जाएंगे.
4: That's amazing.
3: Okay, well, अभी आपका नाम सिर्फ shortlist हुआ है, अभी और process बचा है, और भी candidates होंगे. Let's see आप जर्मनी जाएंगे या नहीं जाएंगे, but for the day, आपका नाम shortlist हो चुका है in Big Check-In.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रे।
1: But I prefer my food to be satranga, honestly. हर कलर होना चाहिए यार मेरे फूड में।
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड तीन बच्चों के हैं। पीक लंच आवर टाइम चल रहा है। अगर अभी तक लंच नहीं किया है तो भाई अब तो भूख पक्का लगने वाली है। प्ले दिस गेम, खाओ पियो ऐश करो। एंड आज की गेम में कौन जीतता है, जो भी जीतेगा उसे मिलेगा ओपन मूवी टिकट्स। वेल देख लो यार, अगर अभी तक खाना नहीं खाया है ना तो इस गेम के बाद तगड़ी वाली भूख लग जाने वाली। अगर खा चुके हो तो फिर से लंच तो करना पड़ेगा। छोटी उंगली पे Yes, yes, that too in a bit. Call करो मुझे 800-106-2 पर अगर खेलनी है मेरे साथ। खाओ पियो ऐश करो गेम। Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम खेलने वाले हैं Let's see कौन है मैं साथ कॉल पे. Hi.
2: Hi अवनी. धर्म दिस साइड. How are you?
1: धर्म. Okay. मैं बहुत बढ़िया. मैंने अभी तक खाना नहीं खाया लेकिन क्या आप लंच कर चुके हो?
2: नहीं बस अभी लंच करने जा रहा हूँ.
1: Okay, लंच में क्या है?
2: आज चिकन बिरयानी.
1: ओके दैट्स अ फैंसी लंच. ठीक है हम शुरू करते हैं. आई विल गिव यू टू डिशेस. आपको उन दोनों में से कोई एक चूज करनी है. ठीक है. चिकन बिरयानी या राजमा चावल?
2: चिकन बिरयानी.
1: चिकन बिरयानी या फिर पिज्जा?
2: चिकन बिरयानी.
1: चिकन बिरयानी या फिर आलू का पराठा?
2: चिकन बिरयानी. स्टिल
1: चिकन बिरयानी या फिर तंदूरी मलाई मोमोज?
2: ऑलवेज चिकन बिरयानी. टॉप ऑफ दैट.
1: ओके चिकन बिरयानी या फिर गुलाब जामुन?
2: मीठा मुझे वैसे पसंद नहीं है.
1: ओके
2: डेफिनेटली चिकन बिरयानी.
1: चिकन बिरयानी या फिर चाइनीज हाका नूडल्स?
2: नो चाइनीज आल्सो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो स्टिल आई एम इन लव विद चिकन बिरयानी.
1: चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी?
2: हां दैट्स द डिफिकल्ट वन. डिपेंड्स ऑन द मूड. यस आई विल नॉट डिनाय मटन बिरयानी.
1: ओके मटन बिरयानी या फिर छोले भटूरे?
2: मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी या फिर बटर चिकन?
2: बटर चिकन.
1: मैंने कहा ही था ये गेम खेलने के बाद आपको डबल ट्रिपल भूख लग जाएगी. ओके
2: अमेजिंग.
1: थैंक यू धर्म फॉर प्लेइंग. खाओ पियो ऐश करो विद अस. यू विन ओपन मूवी टिकट्स. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू अम्मी. थैंक यू. गॉड ब्लेस. यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आई हैव अ सन विद मी अम्मी. आई एम टेकिंग हिम फ्रॉम स्कूल. वी आर गोइंग होम नाउ. ही वांट टू से हेलो टू यू.
3: हेलो.
1: हाय कौन बोल रहा है?
3: मैं वरदान बोल रहा हूँ.
1: वरदान हाउ वाज योर डे एट स्कूल?
3: फैंटास्टिक.
1: क्या क्या किया स्कूल में?
3: दोस्तों के साथ मस्तियाँ की, पढ़ाई की, टीवी देखा, स्टोरीज लगाए थे, मॉनिटर की क्लास को, बहुत सारे काम किए.
1: खाना भी खाया था दोस्तों के साथ?
3: हाँ जी.
1: क्या खाया? याद नहीं है?
3: याद है. एग फ्राइड राइस. नहीं भूलता खाना.
1: ओके घर जाके अब अच्छे से फिर से लंच करना है. ठीक है.
3: हाँ जी बिल्कुल. थैंक यू अबू.
1: ओके बाय. इफ यू वांट टू प्ले खाओ भी ऐश करो विद मी, ऑल यू गॉट टू डू इज टेक्स्ट करो दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Well, it's the time to do shopping as well. वो कैसे मिस हो सकती है?
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मेगा जील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन का सीजन 5 जो है आ चुका है प्रेजेंटेड बाय मिश ब्रोज एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स 5 सितंबर को हो रहा है 10 AM to 10 PM डबल ट्री बाय हिल्टन मनखूल दुबई में बहुत कुछ शॉप कर सकते हो फैशन ज्वेलरी लाइफस्टाइल फेस्टिव एसेंशियल्स जो फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं एंटरटेनमेंट एंड एक्टिविटीज भी होंगी ढोल ताशा होगा लकी ड्रॉज निकलेंगे बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग फन एक्टिविटीज होंगी एंड अ लॉट मोर सपोर्टेड बाय मुकवानो टी दैट कनेक्ट्स श्री अग्रवाल स्वीट्स प्रीमियम इंदौर स्वीट्स एंटरटेनमेंट पार्टनर्स डीसी प्रोडक्शंस एमआरआई टीन्स कनेक्ट जील गणेश चतुर्थी एग्जीबिशन सीजन 5 वेयर शॉपिंग मीट्स सेलिब्रेशन 5 सितंबर मार्क योर कैलेंडर डबल ट्री बाय हिल्टन मनखूल में वहां मिलेंगे गोना बी बिग विद बिग 106.2

0: गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 64% ह्यूमिडिटी हो रही है फिलहाल, लेकिन इट एक्चुअली फील्स लाइक 80 और 90। हाँ कि ना, बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बदली सी हवा तो है, हवा में ना मीठी मीठी चाय की खुशबू आ रही है, टी की खुशबू आ रही है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड टी गॉसिप की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कॉफी विद करण का सीजन वापस से आने वाला है एंड द गेस्ट लिस्ट इज आउट। ये डुओज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अहान एंड अनीत पद्दा, जानवी एंड लक्ष्य, सिद्धार्थ एंड कियारा, वरुण एंड कृति, रश्मिका मंदाना एंड विजय, फराह खान एंड समय रैना, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, अक्षय खन्ना एंड फरहान अख्तर, विकी और दिलजीत। आई एम मोस्ट एक्साइटेड। अगर गलती से मैं कह रही हूँ फराह खान और समय रैना एक एपिसोड में आ गए, एक गेस्ट बनकर आ गए ना, आई एम टेलिंग यू भाई मजे आ जाएंगे।
2: हीरे कुफर करे आंख ना खड़े, बॉडी संग मर मर।
0: कभी कभी मुझे लगता है यार कि जितनी मुझे टी पसंद है, ये जो मुझे गॉसिप पसंद है, अगर मुझे कोई नॉनशलेंट सा बंदा मिल गया तो क्या होगा। मैसेज करके कि आपको इन सब में से बेस्ट डुओ कौन सा लगता है, कौन सा चाहते हो कि कॉफी विद करण पर आए। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड बहुत लोगों को ना यार यार बोलने की बहुत आदत होती है. एंड ऑफ कोर्स यार मैं तो उसके से उस लिस्ट में टॉप नॉच लेवल पर आती हूँ, इसलिए मेरा यूजर नेम भी अवनी यार है. एंड कई बार ना मम्मी यार पापा यार मैं बोल देती हूँ, निकल जाता है मुंह से. आई एम श्योर आपकी भी निकल जाता होगा. इफ यू ऑल्सो हैव दिस यार वाली प्रॉब्लम बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके. बट जाकिर खान भी हमारी कैटेगरी में आते हैं यार. पापा यार उनका शो जो है नेटफ्लिक्स पर आ रहा है 18 सितंबर. बहुत सुना है यार इस शो के बारे में, बहुत लोग लाइव अटेंड कर चुके हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर अब आ रहा है, अब मिस आउट नहीं कर पाएंगे हम. 18 सितंबर इट इज. ये तो ओटीटी की बात हो गई यार. अब इस वीकेंड थिएटर्स में बहुत ही अमेजिंग फिल्म आ रही है, 4 सितंबर मिर्जापुर. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन यार. दिस सॉन्ग It just takes you back to that nostalgia, to flashbacks. I'm really excited. September 4th, releasing Mirzapur in theaters. Coming up next is the same track from the film. Till then, you keep it locked to Big 106.2.

0: brought to you by insurancemarket.ae.
1: Insurancemarket.ae.
2: UAE, the biggest laptop buyback is back at Sheriff DG. This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sheriff DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply.
3: Missed your morning buzz?
4: Hey,
3: उठा
5: ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। Yes or no? आज के हमारे contestant, I've got Amit Mathrani with me on the phone line. Good morning, Amit. How are you doing?
6: Good morning, I'm fine. How are you?
5: Oh, काम पे पहुंच गए।
6: थोड़ा।
5: खुसपुस करके बात करनी पड़ेगी। How many times have you been to Germany to visit your daughter?
6: Just basically twice.
5: Twice? Not bad. अच्छा, just like it है भाई। चलो सही है। So should I start your time? Are you ready? Your time starts now. Your options are currywurst, poutine, and hot dog.
6: The second, the first one.
5: You're saying the first one. Are you sure?
6: First one.
5: Have you had it?
6: Hot dog to nahi. Hot dog to nahi. Believe me, I'm a vegetarian guy.
5: Yeah, the first one. So congratulations. Your name goes into the draw.
6: Thank you so much.
5: And बस कुछ दिन और आपको अपने fingers cross रखने हैं. Ask your daughter to also keep her fingers crossed in Berlin. That अगर आपका नाम draw में से निकल गया, you'll be heading out to Berlin with Team Big. How does it feel right now? Describe your feelings.
6: It really feels nice. Thank you so much for giving me the opportunity.
5: Yeah.
6: And after a long time, I'm basically participating in such kind of competition.
5: So are you going to tell your daughter, or is going to be a surprise, or what? चलो बढ़िया, जब नंबर लग जाए तभी बताना। एक्चुअली जस्ट सरप्राइज है, ओके, जस्ट धमक जाना वहाँ पे।
6: नहीं, क्यों करना वहाँ पे सरप्राइज है।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
7: इवनिंग रश शुरू हो चुका है। अगर आप शेख जायद रोड पर जा रहे हो टुवर्ड्स शारजा, ऑफ कोर्स काफी कंजेशन मिलेगा, स्पेशली इन द बिजी स्पॉट्स लाइक अल खेल रोड एंड शेख मोहम्मद बिन जायद रोड एज वेल। अगर कहीं और फंसे हो, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062, और घर जा रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम अपने साथ लेकर चलना।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज एंड अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन यूएई ट्रस्टेड अक्रॉस यूएई एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट insurancemarket.ae एंड फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम का इंस्टा हैंडल दैट्स द प्रोफाइल एंड यू कैन डीएम मी एज वेल on Avni R ka page AVNI YAAR baki milti hun kal 1 to 5 on the same the big mix and until then keep it logged to big 106.2

0: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package, and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: Big 106.2. That's my song.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is the Big Thrill. मैं हूँ Mansi and until today मुझे लगता था I'm a very patient person. मतलब मेरा patience, मेरा सब्र तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. But आज in these 5 months of driving पहली बार मैं 2 घंटे के ट्रैफिक में अटकी हूँ. बर्षा से मीडिया सिटी टेक्निकली 15 से 20 मिनट का सफर है, बट ये जो सफरिंग हुई है ऑलमोस्ट 1 घंटा 49 to 50 मिनट्स की, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट अ पेशेंट पर्सन. आई वाज लिटरली हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग इनसाइड द कार एंड नाउ आई अंडरस्टैंड पीपल जो रोज दुबई से शारजा से दुबई करते हैं, वो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं. फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9 एंड एवरी सिंगल इवनिंग 5 से 6. While you are in the jam, we jam with the karaoke. अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं, giving you all the details in just a bit, kickstarting the show with

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, वेरी ह्यूमिड अगेन, फिलहाल ह्यूमिडिटी 62% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल और आज मैंने आपका दुख समझा है जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के ट्रैफिक में अटके रहते हैं, वो भी एग्जैक्ट पे एवरी सिंगल इवनिंग। आई अंडरस्टैंड कि आपके और मेरे धैर्य का बांध सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ही तोड़ सकता है। आज पहली बार इन 5 months ऑफ ड्राइविंग मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ट्रैफिक में अटकी रही, जो मैंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था, बिकॉज आई कम फ्रॉम बर्षा टू मीडिया सिटी विच इज हार्डली 15 मिनट का रास्ता। आई डोंट नो आज क्या हुआ था, इतना ट्रैफिक और जो मैं अकेले गाड़ी में चिल्ला रही थी, मुझे खुद पे डाउट होने लगा। मतलब आज से पहले आई वॉज लाइक आई एम द कामेस्ट पर्सन अराउंड, बट आई हैव नो काम एट ऑल व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक। बिलाल, व्हाइल यू आर इन द जैम, वी जैम हियर। अब आप ट्रैफिक में अटकते हो तो आपको कंपनी मैं देती हूँ। मैं जब अटकी थी तो कोई गाने वाने मुझसे गवाई नहीं रहा था ना, सो वी कैरियोकी एवरी सिंगल इवनिंग। हम गाड़ी में अपना कॉन्सर्ट करते हैं। अगर आपको गाना गाने का शौक है, विच आई अज्यूम हर देसी को होता है, अच्छे खाने एंड गाने का शौक, अगेन 90s का गाना है, बहुत ही पॉपुलर बट थोड़ा सा टफ है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इस गाने को पहचान पाएंगे।

आई नो दिस इज अ लिटिल टफ, आई विल गिव यू अ छोटा सा हिंट, ऋषि कपूर का गाना है. Let me see कितनों को याद आ रहा है. याद आ गया है तो 800-1062 is the number to karaoke. Keeping you company, मैं हूं मानसी. This is the big thrill.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill. And while you're stuck in the jam, we jam here with the karaoke. Joining us is Suhail. Good evening.
2: Good evening, Mansi. How are you?
1: I am good. पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दो. मैं नई नई ड्राइवर हूँ. आज 5 महीने हुए हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए. पहली बार मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे के ट्रैफिक में थी और मैं अकेले गाड़ी में चिल्ला रही थी. आपके साथ होता है ये?
2: देखिए, जब पहली पहली बार होता है तो इंसान को बहुत लगता है, फिर यूज्ड टू हो जाता है. आप परेशान ना हो, आपको भी आदत पड़ जाएगी. ये दुबई है.
1: ये अच्छी आदतें तो है नहीं, दो घंटे के ट्रैफिक में अटकना. फिलहाल आप करते क्या? Oh my God, fancy, very fancy.
2: From my one office to, from Dubai Mall office to DHU office.
1: Oh my God, please stop flexing. I just said fancy, very fancy. फिलहाल सुहेल, आप गाना गाने का शौक रखते हैं?
2: जी, बिल्कुल. और इस सवाल से आपने वो गाना पूछ लिया जो कि मेरा फेवरेट है, और उसकी दो रीजन है. एक तो वो कुमार शानू साहब ने गाया है.
1: हाँ जी.
2: इस फिल्म में शाहरुख खान साहब भी थे.
1: ओहो. और तीसरा रीजन, कभी आपने किसी के इंतजार में, किसी की उम्मीद में भी ये गाना गाया होगा. अब आप गाते कैसा हो वो देखते हैं पहले.
0: Karaoke.
1: हाँ जी.

0: है सनम हम तो सिर्फ तुम्हीं से प्यार करते हैं।
1: तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते
0: उम्मीद और इंतजार तो छोड़ दिया ना, बाकी कहीं ठीक है बस।
1: उम्मीद और इंतजार क्यों छोड़ दिया?
0: अब ना उम्मीद है ना कोई इंतजार।
1: ओए होए होए होए, काफी दिल टूटा हुआ लग रहा है। एक बार टूटा है कि मेरी तरह बार बार टूटा
0: है? टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अब तो याद भी नहीं।
1: वो है कहाँ जिसकी उम्मीद इंतजार में गाया था?
0: तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, कहीं होंगी उनके भी 3-4 बच्चे होंगे।
1: चेक करना पड़ेगा मतलब है सोशल मीडिया पे? ब्लॉक नहीं किया आपने?
0: नहीं,
1: देखो
0: नहीं,
1: मेरी
0: नहीं।
1: एक थ्योरी है कि जब तक आप ब्लॉक नहीं करते हो मतलब आपका प्यार सच्चा नहीं था। सच्चा प्यार हमेशा ब्लॉक रहता है सोशल मीडिया पे। बट सिर्फ 2 लाइन आपने गाई, अच्छी गाई, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम।
0: Thank you, Manzi. Thanks a lot. Bye. वैसे अगर आपको लिरिक्स आते हैं एंड आपको ये गाना भी आता है, प्लीज गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। Karaoke.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Butthurt.
1: Honestly, मुझे लगा था ये गाना टफ है, बट ये गाना काफी लोगों का फेवरेट है. अफकोर्स शाहरुख खान, ऋषि कपूर, दिव्या भारती, मूवी का नाम दीवाना जो मैंने कई बार देखी है. राइट नाउ जॉइनिंग अस इज वजाहत. हाय वजाहत, गुड इवनिंग.
2: हाय, वेरी गुड इवनिंग टू यू मानसी.
1: हाउ आर यू? आई एम गुड. अगर मैं आपसे पूछूं आजकल आप किस चीज की उम्मीद और इंतजार में
2: हैं?
1: अच्छा, ये परफॉर्मेंस के इंतजार में है. वेरी वेरी नाइस. आपको जल्द मिले ये मौका, हम ये भी उम्मीद करते हैं, और आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े. फिलहाल
0: karaoke
1: गला जो है तैयार कर लिया इन्होंने करके, तो चलो जी आपका ट्रैक है.

इंतजार सर पे है, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।

0: सवार चलते हैं सनम हम तू सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।
1: मुझे नहीं पता कि आप फुल टाइम सिंगिंग करते हैं कि नहीं, बट आई थिंक आपको शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आप में हुनर है, आप में वो कला है, तो उसे बाहर लाने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन, पूरा टाइम देना चाहिए।
2: थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड आई होप इंशाल्लाह आई विल बी डू द कंटिन्यू द सेम।
1: बिल्कुल करिए सर, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं क्योंकि हम जिंदगी में उलझ से जाते हैं, तो कभी कभार जिंदगी ना एक ही मिलती है, तो जो दिल को अच्छा लगे वो हमेशा ट्राई करना चाहिए, चाहे वो बाद में गलत निकले। ये एडवाइस मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और लोगों को भी देती हूँ। तो आपने बड़ा कमाल गाया एंड जरूर गाइए और आई होप आपको जल्दी कोई मौका दे टू परफॉर्म।
2: थैंक यू सो मच मासी एंड हैव अ नाइस डे।
1: यू टू, बाय वजाहत।
2: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 6:07
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Good evening, this is the Big Thrill. मैं हूँ मानसी. आज का दिन चाहे आपका भी मेरी तरह ट्रैफिक में अटका हो, let's think about a vacation. वो भी all expenses paid all the way to Germany. Beautiful castles, luxury cars, and some amazing food. There's one thing that I look forward to whenever I travel is the local food. And Germany में तो खाना कमाल है. In fact, अगर आप भी इंटरनेशनल क्विजींस के बारे में जानते हैं देन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है टू गेट शॉर्टलिस्टेड आश्रम. बट शॉर्टलिस्ट होने के लिए टू ट्रैवल विद टीम बिग वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू चेक इन बिग चेक इन योर नेम व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर. वी विल रन अ रैंडमाइजर. रैंडमाइजर आप में से एक का नाम निकालेगा एंड आई विल प्ले अ फन फूड गेम विद यू हियर. बट फॉर ऑल दिस पहले रजिस्टर करना जरूरी है. इट्स टाइम टू चेक इन.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, फटाहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, मिलाई।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, ye hai Big Thrill. Main hum Mansi. We're playing the 5-second rule. Joining us is Tanzeel. Tanzeel, mujhe bahut acche se yaad hai. Aapne kuch mahino pehle mujhe phone kiya tha. And aapki sister, I think, was looking for a girl. Aap shaadi ke liye ladki dhoond rahe the. तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल चल रहा है? हुई नहीं हुई, मिली नहीं मिली?
2: अभी तक नहीं मिली, बस अभी तक सर्चिंग हुई रही है।
1: तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन है।
1: बस लड़की हो, जिंदा हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना। तो कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ पे ढूंढ रहे हो के अपनी कंट्री में ढूंढ रहे हो?
2: इंडिया।
1: इंडिया में ढूंढ रहे
2: हो?
1: तो ये होते हैं ना शादी.com एंड matrimonials, उसमें रजिस्टर नहीं किया आपने?
2: नहीं, उसमें अभी तक किया नहीं है। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि करना चाहिए, बट लेकिन सिस्टर बोल रही है कि हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लो तुम, कुछ अच्छा ही लाएंगे।
1: ऐसा तो नहीं कि सिस्टर नहीं चाहती है कि आपकी शादी हो? धीम तना धीम, क्योंकि मैं भी सिस्टर हूँ और मैं जब तक मेरा भाई नहीं कर रहा है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब भाभी आ जाती है तो भाई अपना रहता नहीं है ना, ऐसा मैंने सुना है। ड्रामे बहुत देखती हूँ मैं।
2: हाँ, ड्रामों में ऑलमोस्ट यही दिखाते हैं, बट इन रियल लाइफ
1: सिस्टर ये डर तो रहेगा ना कि हाय मेरा भाई ले गई।
2: थोड़ा सा उनको होता है कि हर चीज के लिए भाई खड़ा हुआ है, बट लेकिन शादी के बाद कुछ ना कुछ।
1: हाँ, मुझे लगता है कि आपकी सिस्टर भी वही कर रही है जो मैं अपने ब्रदर के साथ कर रही हूँ फिलहाल। कैसा रहा आपका दिन तंजील?
2: बहुत अच्छा रहा आज का दिन। आप बताइए, आपका कैसा रहा?
1: जी मत पूछिए, मैं 2 घंटे ट्रैफिक में अटकी रही आज।
2: ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है ना, इसीलिए
1: मैं तो दोपहर में अटकी थी सर। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ट्रैफिक होगा, बट ऐसा ट्रैफिक देखा नहीं है मैंने जो आज देखा है। फिलहाल आप तंजील आए हैं तो हम खेलेंगे 5-second रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर।
0: 5-second रूल।
3: ओह यस।
1: 3 चीजें जो आप दही से बना सकते हैं।
2: दही से खीर बना सकते हैं।
1: दही से खीर बना सकते हैं। वाह वाह वाह। ये जो आपने रायता फैलाया है पहले जवाब में, मजा आ गया है। तंजील, आपकी सिस्टर का नंबर मुझे देना। आपको 100% जरूरत है शादी की, आप दही से खीर बना रहे हैं तो आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। 3 things दैट आर येलो। अरे अरे अरे अरे अरे, दिल ही नहीं लग रहा है तंजील का। 3 हनीमून डेस्टिनेशंस जहां आप जाना चाहेंगे।
2: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी।
1: ये देखो जवाब आया ना,
2: इसका जवाब माइंड में रहता है
1: हमेशा 24/7 आपके माइंड में यही रहता है सर, और इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आप दही से खीर बना रहे हो। आगे बढ़ते हैं कि अब आपने हनीमून डेस्टिनेशंस का नाम लिया है तो 3 इमरान हाशमी की मूवीज।
2: मर्डर, मर्डर 2 एंड जहर।
1: ओहो, फैन है आप। 3 ऐसी चीजें जो आप होटल रूम से उठाएंगे।
2: शैम्पू, टॉवल एंड सोप।
1: ऑलमोस्ट देयर। 3 मसाले जो किचन में मिलते हैं।
2: गरम मसाला और लाल मिर्च एंड हल्दी।
1: अगर शादी के बाद बीवी गुस्सा हो गई तो 3 चीजें जो आप उससे मनाने के लिए करेंगे।
2: उसको मनाने के लिए तो सबसे पहले फ्लावर दूंगा, उसके बाद उसको डर पे लेके जाऊंगा।
1: अच्छा, क्रेडिट कार्ड दे देना शॉपिंग करने के लिए। फिलहाल तंजील खेला तो आपने, ओके ओके सही है, मतलब मुझे याद रहेगा दही से खीर बनती है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। बट ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप अब अगली बार जब फोन आए तो आप सच्ची में मिठाई खिलाएं, खीर खिलाएं।
2: बिल्कुल
1: ठीक है, ऑल द बेस्ट।
2: बिल्कुल खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच मानसी, बाय बाय।
1: ये 5-second रूल खेलने का IQ रूल है, मुझे कॉल करना 800-1062 पर।
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Chill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। Consult your doctor or pharmacist before consumption.
4: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: और राइट, एक घंटा 12 मिनट का डिले है। शेख मोहम्मद बिन जायद पे एक एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुआ है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, अवॉइड द रोड इफ यू कैन। देयर इज हैवी ट्रैफिक नियर राशिदिया, एंड अगर आप इस वक्त जा रहे हैं टुवर्ड्स फेस्टिवल सिटी, 18 टू 25 मिनट डिले। ट्रैफिक ऑल्सो ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो नियर दुबई क्रीक हार्बर, रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया। Also patchy traffic at the moment near Jeddah, Dubai Design District, Sheikh Zayed par filhal 57 minute delay. Heavy traffic at the moment if you're on the Jumeirah Road heading towards Umm Sukeem. Traffic trailing bahut hi slow near Barsha 1, Alkuz Industrial Area. Almost a 25 minute delay if you're on the Hesse Street heading towards Jumeirah Village Circle. Anything else you'd like to report, let me know 800-1062 par.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
6: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपटूंगी ना उसको।
0: ये है मानसी on the big thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: इमेजिन ये गाना आपकी ब्रांड न्यू जिटोर में।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ऑनेस्टली इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जिटोर्स अनबीटेबल ऑफर्स। वेट ऑन देम और 0% इंटरेस्ट। फ्री सर्विस पैकेज इंक्लूडेड है, 1 मिलियन किलोमीटर वारंटी प्लस EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 दिरहम्स पर मंथ, दैट इज 966 दिरहम्स पर मंथ। विजिट जिटोर शोरूम्स अक्रॉस अबू धाबी, दुबई, अजमान और अलेन आज ही। जिटोर UAE पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप होल्डिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill of Mansi, and it's a thrilling, exciting khabar ho hi nahi sakti hai. We're taking you to Germany. It's time to check in, and very, very simple. Register karne ke liye WhatsApp karna hai. Big check in, apna naam to 0543091062.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Filhal, randomizer ne dhoond liya hai Richa ko. Hi Richa, good evening.
2: Hi Mansi, good evening.
1: How are you? Kaisa raha aapka Wednesday?
2: बढ़िया रहा, स्कूल स्टार्टेड.
1: देखी मैंने आपकी डीपी बच्चों के साथ.
2: थैंक यू.
1: तो ये कहाँ घूमने गए थे?
2: इट्स जेबीआर ओनली.
1: वाओ, जेबीआर भी यूरोप से वैसे कम नहीं लगता है. फोटो में तो मुझे लगा यूरोप घूमने गए थे.
2: नो नो नो नो नो, इट्स जेबीआर ओनली.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिलहाल मुझे एक बात बताओ रिचा, जब तुम ट्रैवल करती हो तो क्या अपने साथ वो खाकरे थेपले लेके ट्रैवल करती हो, या फिर व्हेनेवर यू ट्रैवल तो जहाँ जैसी कुजीन वैसा?
2: या जैसा कुजीन, मैं लोकल फूड ट्राई करती हूँ.
1: अच्छा, तो ये दो दिन बाद आए, मुझे दाल चावल खाने वाली फीलिंग नहीं है.
2: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: बहुत बढ़िया. तो अगर आप डिफरेंट क्विजींस ट्राई करती हैं तो ये गेम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है. आई एम गोना गिव यू थ्री ऑप्शंस हियर, जिसमें से एक जर्मन डेलिकेसी है, द रेस्ट ऑफ देम आर नॉट. आपने गेस करना है. आप तैयार हो?
2: ओके.
1: ठीक है, जर्मनी जाने वाले हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं.
2: यस यस.
1: Your options are brownie, stolen cake, or pancake.
2: Brownie, and the other one is
1: pancake and stolen cake. इसमें से German delicacy कौन सी है?
2: I think brownie, stolen cake and pancake.
1: इनमें से एक German delicacy है, बाकी दो नहीं है.
2: So stolen cake?
1: Are you sure या ये तुक्का है?
2: Yes, I am sure.
1: झूठी तुक्का है ये. Congratulations, Richa! You're shortlisted for the check-in to Germany. बच्चे के सामने जो माँ सफाई से झूठ बोलती है, नहीं, आई एम श्योर तुक्का मारा स्टूल.
2: मैं बहुत दिन से देख रही थी आपके, तो मैं वो डिशेस रिमेम्बर कर रही थी, और फिर मुझे इतना इजी वाला आ गया केक. ये डेजर्ट पे तो मैं गई नहीं थी.
1: अच्छा, तो अभी तक क्या क्या याद किया है?
2: मतलब याद किया है, मतलब मैं देख रही थी गूगल पे
1: कि क्या मिलता है, क्या खाएंगे वहाँ पे.
2: हाँ, व्हाट आर द डिशेस फॉर द जर्मनी.
1: वेरी नाइस. फिलहाल आप शॉर्टलिस्ट हुए हो. होपफुली द नेक्स्ट कॉल दैट यू गेट इज के चलो अब आपको ये सब ट्राई करवाते हैं जर्मनी ले जाके. ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट.
2: थैंक यू मानसी.
1: वेलकम रिचा. यू आर वेलकम. बाय
2: बाय.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: InsurersMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
1: The Big Mix. Miss kiya gaya?
3: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
4: Hi Sara.
5: Hi Avni.
4: Are you excited for Big Check in Germany?
5: Of course.
4: But let's see, आप ये German food dish contest जीतते हो कि नहीं जी? You ready?
5: Yeah. Yes.
4: So first option is sauerkraut. Second is kimchi. Third is pickles.
5: Sauerkraut.
4: You sure about this one?
5: Yes.
4: Lock कर दिया जाए?
5: Yes, lock कर दिया जाए.
4: And that's the correct answer. 1 to 10 के आपने खुद को 6 नंबर दिए, फिर भी आप जीत गए भाई।
5: Yeah, I was so skeptical. I was like, is it correct or not? But then I was like, okay.
4: अच्छा, किमची खाई है?
5: हाँ, खाई है।
4: Pickles खाए हैं?
5: Pickles, of course.
4: और ये sauerkraut खाया है?
5: नहीं, अभी तक तो नहीं।
4: नहीं खाया है, तो ये आपकी checklist में होगा जब आप जाएंगे।
5: That's amazing.
4: Okay, well, अभी आपका नाम सिर्फ shortlist हुआ है, अभी और process बचा है, और भी candidates होंगे. Let's see, आप जर्मनी जाएंगे या नहीं जाएंगे. But for the day, आपका नाम shortlist हो चुका है in Big Check-In.
1: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5pm. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: हैवी ट्रैफिक नियर प्रोडक्शन सिटी. इन फैक्ट जेवीसी अगर आप जा रहे हैं वहां भी स्लो मूविंग ट्रैफिक है गोइंग टूवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी. दिस ट्रैफिक डिस्कवरी एंड फुरजान एरिया में हैवी ट्रैफिक ऑन शेख जायद फिलहाल 37 मिनट डिले. दिस ऑल्सो पैची ट्रैफिक वर्का से मर्डिफ अराउंड 18 to 22 मिनट डिले. राशिदिया फेस्टिवल सिटी It is kind of slow moving still. There is also thoda bahut traffic. Agar aap Jumeirah Road pe hain, anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. With zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2. Yeah!

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill, Mansi, and I'm going to take you to 2nd of September 2006. Agar millennial ho to chup chup ke ye movie aapne bhi zarur dekhi hogi, kyunki jab bhi TV par is movie ka gana aata tha, mummy aisi nazron se dekhti thi कि चैनल बदलना ही पड़ता था. बट छुप छुप के हम सब ने अपने कंप्यूटर्स पे ये गाना बहुत देखा है. मतलब आपके और मेरे प्राइम का गाना. समहाउ हम में से कई लोग इस गाने को क्रेडिट देते हैं. इस गाने को देखते देखते हम बड़े हुए हैं. इमरान हाशमी की मूवी, साथ में तनुश्री दत्ता, सोनू सूद, एंड मूवी दैट गेव अस अ ब्रिलियंट एल्बम. हिमेश रेशमिया ओवरनाइट स्टार बन गए थे इस मूवी के बाद. इनफैक्ट ये जो टाइटल ट्रैक है, हिमेश ने एज अ डमी वोकल गाया था एंड फॉर guiding the other singer who is supposed to sing the song. But while filming the song, Imran Hashmi, the director and the crew felt ki Himesh Reshamya ki jo unique nasal awaz hai, wo is gaane ko aur khas banati hai, and they kept his voice for the final track and it launched his massive career as a playback singer. In fact, Himesh ne apne interview mein bataya ki is gaane ke piche inspiration 1980 ka classic gaana tha, Karz ka Darde Dil. Ab mujhe nahi pata ki Himesh ki kya inspiration thi, but इस गाने ने, इनफैक्ट इस मूवी ने, इमरान हाशमी ने हम सबको बहुत सारी चीज़ों के लिए इंस्पायर किया. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस मूवी, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, बैक इन 2006.
0: बिग 106.2.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हेलो,
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना।
2: हेलो,
1: सुन रहे हो ना?
2: हे

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: 37 degrees, low jaega around 33. Very humid today. Filhal, humidity 63% par.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल मानसी। एंड 2006 में अगर आप भी टीन एजर थे जस्ट लाइक मैं थी, तो ये मूवी एंड ये गाना आज भी आपको याद होगा फॉर व्हाटएवर रीजंस। आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग। आज ही के दिन ये मूवी रिलीज हुई थी, इमरान हाशमी, तनुश्री दत्ता एंड सोनू सूद। इनफैक्ट महेश भट्ट जो है वो इनिशियली किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर को, मॉडल को कास्ट करना चाहते थे फॉर द लीड एक्ट्रेस। हाउएवर तनुश्री दत्ता वन द फेमिना मिस इंडिया टाइटल इन 2004 एंड डायरेक्टर आदित्य दत्त fast tracked her screen test and this was her grand Bollywood debut. Sonu Sood ne gamble kiya tha is role ke saath. He played the negative character in the movie and of course initially agar aapne movie dekhi hai, he started off as a typical harmless best friend. Movie ke climax tak wo ek obsessive character mein badal jate hain and murder mystery thi, but more than the murder mystery, Gaana and Imran Hashmi saath mein Himesh Reshamya ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे। हिमेश ने गाने गाए भी हैं इस मूवी में, कंपोज भी किया है साउंड ट्रैक को एंड ही ऑल्सो मेड हिज वेरी फर्स्ट ऑन स्क्रीन बॉलीवुड अपियरेंस इन द ऑफिशियल रीमिक्स गाना, रीमिक्स वर्जन ऑफ आशिक बनाया आपने। ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट आशिक बनाया आपने, मैसिव सरप्राइज हिट एंड इट हैज अ कल्ट फॉलोइंग। Despite receiving critical reviews on the release, the movie has a lot of bold elements and the music aaj bhi bahut popular hai. That is why the cult following. So here, celebrating 21 years of Aashiq Banaya Aapne. Ab aapne ye movie kiske saath dekhi thi, uske baare mein socho. Is gaane ko soch ke jo aapko yaad aa raha hai uske baare mein socho. But I have to say, I love the music. I was such a big fan of Himesh. Today I actually sound like Himesh because meri naak band hai. But mujhe yaad hai ke main pura din is album ko sunti thi, chahe wo Aapki Kashish ho, Aashiq Banaya, Mar Jawa Mit Jawa, kyunki ye gaana mujhe dekhna allowed nahi tha, but chupke main

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. द फेस्टिव सीजन इज हियर एंड मैं हर साल अपने घर गणपति लेकर आती हूँ. एंड मेरी शॉपिंग हर साल होती है फ्रॉम मेगा जील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन. दिस इज द सीजन 5 प्रेजेंटेड बाय मिश ब्रोज एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स. 5 सितंबर को सुबह 10 से रात 10 बजे तक आपकी फेस्टिव सीजन की शॉपिंग हो जाएगी एट डबल ट्री बाय हिल्टन मनकूल दुबई में. यू कैन शॉप फॉर फैशन, ज्वेलरी, लाइफ स्टाइल, फेस्टिव एसेंशियल्स, एंटरटेनमेंट भी है, एक्टिविटीज भी है, शॉपिंग भी है, मस्ती भी है, लकी ड्रॉज, प्लस बच्चों के लिए एक्टिविटीज है सो दैट दे आर बिजी. सपोर्टेड बाय मुकवानो टी दैट कनेक्ट्स, श्री अग्रवाल स्वीट्स प्रीमियम, इंदौर स्वीट्स, एंटरटेनमेंट पार्टनर्स, डीसी प्रोडक्शंस, एमराइज टीन्स कनेक्ट, जील गणेश चतुर्थी एग्जीबिशन सीजन 5, वेयर शॉपिंग मीट्स सेलिब्रेशन. डू नॉट फॉरगेट 5 सितंबर सुबह 10 से रात 10 बजे एट डबल ट्री बाय हिल्टन मनकूल.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल टाइम फॉर मी टू से बाय बाय. मैं आपसे मिलूंगी कल. अब मैं जाने वाली हूँ एक बड़े स्पेशल प्रीमियर के लिए. इफ यू आर अ डॉग लवर देन आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि टेलीविजन पे मूवीज में मैं ज़्यादा इमोशनल होती नहीं हूँ, बट अगर मूवी में डॉगी इन्वॉल्व है और उसे खरोच भी आ जाती है तो मैं बहुत रोती हूँ. तो आज मैं बहुत रोने वाली हूँ. मूवी का नाम है ओ माई डॉग एंड ओ माई गॉड. आई वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस वन एंड आज प्रेमियर होने वाला है. वैसे मैं कितना रोती हूँ, क्या करती हूँ, देखने के लिए इंस्टाग्राम पे जाना ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ डॉग लवर यू नो दैट यू definitely cry when you watch a movie which is on dogs, especially the stray dogs. India mein unki condition kya hai, unke halaat kya hai, I'm sure hame pata hai, pet lovers jante hain. So main to bahut emotional hone wali hu. To ha, mera emotional angle aap Instagram pe dekh sakte hain. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. I'll be talking to you tomorrow and very very soon I'll give you a chance to win screening invites for Oh My Dog. Filhal main premiere ko chali, leaving you with

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.